0: You were listening to devotional songs rendered by Sri Vaidyanathan on the 14th of August 2006 during the Ati Rudra Mahayagnam at Prashantanilayam.
1: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba.
2: We now bring you a recital from the Sikh scripture, the Guru Granth Sahib.
3: Tanasari Mahalla Jautha Har Har Bund Pai Har Swami Ham Chatrak Bilal Bilati Har Har Kirpa Karo Prabhu Apni Mukh Devo Har Nimkhati हार बिन रह ना सको एक राती जो बिन अमल अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ तुम हर सर्वर अत अगाह हम लह ना सके अंत माती तू पर पर अपरंपर स्वामी मित जानो अपन गाती हर के संत जना हर जपयो गुर रंग चलू लै राती हर हर भगत बनियत सोभा हर जपयो उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी शरण आई हर राखो लाज पगाती तनासरी महला चौथा कलयुग का धर्म कहो तुम भाई किव छूटे हम छुटका की हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर जपयो तरह तराकी हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगते का की रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपयो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जपयो मन हर हर लग संगत साध जना की दिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरयो चंद चंदा की तुम वड पुरख वड अगम्या गोचर तुम आपे आप आपा की जन नानक कहो प्रभु कृपा की जय कर दसन दाद दसा की तनासरी महला चौथा कर पंजवा दोपद एक ओंकार सतगुर प्रसाद उर तार विचार मुरार रमो रम मन मोहन नाम जपीने अदृष्टा गोचर परंपर स्वामी गुरपुर प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरी सतसंग पय हर कंचन चंदन कीने रहाओ नाम शेख हट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इवना पतीने जन नानक हर हृदय सत्यावो इव हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम ते आई हर दर गै पावै फिर जन्म ना आवै हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी होहे सर्व सुखी हर जस ऊच सबना ते ऊपर हर हर हर सेव छडाई रहाओ हर कृपा निध कीनी गुर भगत हर दीनी तब हर स्यो प्रीत बने आई बहु चिंत विसारी हर नाम ओर तारी नानक हर पय है सिखाई तनासरी महला चौथा हर पढ़ हर लेख हर जप हर गाओ हर भोजन पार उतारी मन बचन हृदय ते आए हर होए संतुष्ट एव पण हर नाम मोरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होए दिन राती हर कीर्त कर बनवारी रहाओ हर हर करी दृष्टो तब भयो मन उद्यम हर हर नाम जपयो गत ही पई हमारी जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए पर्यो है शरण तुम्हारी तनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बुत तीस कोट मुन जनो सब चाहे हर जियो तेरो नाहो। गुर प्रसाद को विरला पावै जिन कौल लाट लिखिया तुर पाओ। जप मन रामै नाम हर जसि उत्तम काम जो गावै सुनै तेरा जस स्वामी हौ तन कै सद बलिहारै जाओ रहाओ। शरणांगत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देहो सोई हौ पाओ। दीन दयाल कृपा कर दीजै नानक हर सिमरन का है चाओ। तनासरी महला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवै सब गावे हर हरि उत्तम बानी गाव्या सुनिया तनका हर थाए पावै। जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी बोलो पाई हर कीर्त हर पवजल तीर्थ हर दर तिन की उत्तम बात है संतो हर कथा जिन जनो जानी रहाओ। आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभ चोज विडानी जन नानक आप मिलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पानी। तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर जा कै वस है काम तेना सो ऐसा हर त्याई है मेरे जी अड़े ता सर्व सुख पाव है मेरे मना। जप मानो सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुखी उज्जल होई है नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहाओ। जय हर सिमरन पया तहे उपाद गत कीनी वडपागी हर जपना जन नानक कौ गुर एह मत दीनी जप हर पवजल तरना। तनासरी महला चौथा

कहो नानक जिन जम ते काढे तिस गुर कै कुरबाणी। तनासरी महला पंजवां जिसका तन मानो तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तौ बिद नीकी खटानी जी की कै ही पहमानी। अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तिल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोल कहीरा गुरदीनो मनतानी। डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए त्रिपतानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिन की बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी। प्रगट्यो जो तो सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानक निचल कर बांधियो गुर की ओ बंधानी। तनासरी महला पंजवां वडे वडे राजन यार पूमन ताकी त्रिशन ना बूझी। लपट रहे

कामवंत कामी बहु नारी परग्रे जोहन चुके दिन प्रत करे करे पछतापे सोग लो मैं सूके हर हर नाम अपारिया मोला अमृत एक निधाना सुख सहजया आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना तनासरी महला पंजवा लवे न लागन कहो है कछु है जाको फिर यो तावै जाको गुर दीनो एहो अमृत तिस ही को बने आवै जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ता कै चेतना मसा रहाओ मौल्यो मंतन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई बरन साको उस ता की कीमत कहन न जाई काल न

आनंद रूप रव्यो सब मदे जतगत पेखों जाई। तुम दयाल कृपाल कृपा निद पतित पावन गोसाई। कोट सुख आनंद राज पाए मुक्ते निमख बुलाई। जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ कै मन पाई। नाम जप तो तृष्णा सब बुझी है नानक त्रिपत अघाई। तनाश्री महला पंजवा जिन कीने वस अपने त्रै गुण। पवन चतुर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या यो जंत विचारा। प्रभ की ओट गही तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए। बिखे ब्याद तब हूटो रहाओ न सुनिए न मुखते बकिए न मोहे ओ डीठी। ऐसी ठगौरी पाए पुलावे मन सब कह लागे मीठी। माए बाप पूत हित प्राता उन घर घर मेल्यो दुआ। किस ही वाद घाट किस ही पै सगले लर लर मुआ। हम बलिहारी सतगुरे अपने जिन्हें हो चलत दिखाया। गुजी पाहे जले संसारा भगत ना व्यापै माया। संत प्रसाद मां सुख पाया सगले बंधन काटे। हर हर नाम नानक तन पाया अपने घर लै आया खाटे। तनाश्री महला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतपाल लो हम बारक तुमरे तारे। जिहवा एक कमन गुण कहिया बेसुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत ना किन्ही लहिया रहाओ। कोट प्राद हमारे खंडो अनक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम्हें अपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले। राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले। तनाश्री महला पंजवा पूजा वर्त।

वेद सिमरत कथा शास्त्र भगत करै विचार मुक्त पाई साध संगत बिनस जाए अंधार चरण कमल आधार जानकार रास पूंजी एक तान मान दी बाण साचा नानक की प्रभ टेक। तनासरी महला पंजवा फिरत फिरत पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया आन सगल बिद क्या मनाया वै हर हर नाम ते आया ताते मोहे तारी ओट गोपाल शरण परे ओ पूर्ण परमेश्वर बिनसे सगल जंजाल रहाओ स्वर्ग मृत पयाल भू मंडल सगल ब्यापे माए जी उदाहरण सब कुल तारण हर हर नाम ते आए नानक नाम निरंजन गाइये पाइये सर्म निधाना कर कृपा जे दे स्वामी बिरले काहू जाना। तनासरी महला पंजवा कर दूजा चौपद एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ जाहे से करे पराल कामना आवे से जंजाल संग न चले तिन सो हीत जो बैराई से ही मीत। ऐसे परम कुले संसारा जन पदार्थ खोए गवारा रहाओ साच धर्म नहीं पावे डीठा झूठ तो हो स्योर क्यों मीठा दात प्यारी विसरिया दा तारा जाने नाही मरण विचारा। वस्त पराई को उठ रोवे कर्म धर्म सगलाई खोवे हुक्म न बुझे आवन जाने पाप करे ता पछो ताने जो तुद पावे सो प्रवान तेरे पाने नो कुर्बान। नानक गरीब बंदा जन तेरा राख ले साहिब प्रभ मेरा। तनासरी महला पंजवा मोहे मस्कीन प्रभ नाम आधार खटन कौ हर हर रोजगार संचन कौ हर एको नाम हलत पलत ता कह आवे काम नाम रते प्रभ रंग अपार साध गावे गुण एक निरंकार रहाओ साध की शोभा आत्मस्कीनी संत वडाई हर जस चीनी आनंद संतन कै भगत गोविंद सुख संतन कै बिनसी चिंद जै साध संतन होवै एकत्र तै हर जस गावै नाद कवत साध सभा मैं अंत विश्राम उन संग सो पाए जिस मस्तक कराम। दोए कर जोड़ करी अरदास चरण पखार कहां गुणतास प्रभ दयाल कृपाल हजूर नानक जीवै संता तूर। तनासरी महला पंजवा सो कत डरै जे खसम सुमारै डर डर पचे मनमुख विचारे रहाओ सिरी उपर मात पिता गुरदेव सफल मूर्त जाकी निर्मल सेव एक निरंजन जाकी रास मिल साध संगत होवत प्रगास जीवन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट कलेश मिटे हरना।

पत परमेसर गत नारायण धन गोपाल गुण साखी चरण सरण नानक दास हर हर संती एह बिद जाती तनासरी महला पंजवा सगल मनोरथ प्रभते पाए कंठ लाए गुर राखे संसार सागर में जल ना दीने किन ना दुख तर पाखे जिनके मन साचा विश्वास पेख पेख स्वामी की शोभा आनंद सदा उलास रहाओ चरण शरण पूर्ण परमेश्वर अंतरजामी साखियो जान बूझ अपना कियो नानक भगतन का अंकर राखियो तनासरी महला पंजवा जय जय पेखो तय हजूर दूर कतो न जाई रव रया सर्वत्र मैं मन सदा ते आई ईत उत नहीं बिछड़ै सो संगी गनिया बिनस जाए जो निमख मह सो अल्प सुख पनिया रहाओ प्रतपाल अप्याओ दे कशून ना होई सा सा संभालता मेरा प्रभ सोई अशल अशेद अपार प्रभ ऊंचा जा का रूप जप जप कर आनंद जानो अचरज अनूप सामत देहो दयाल प्रभ जित तुम है अराधा नानक मंगै दान प्रभ रेन पग साधा तनासरी महला पंजवा जिन तुम भेजे तने बुलाए सुख सह सेती कर आओ आनंद मंगल गुण गाओ सह तुन निचल राज कमाओ तुम कर आवो मेरे मीत तुमरे दोखी हरे आप निवारे अबदा पई बतीत रहाओ प्रगट कीने प्रभ करने हारे नासन भाजन थाके कर मंगल वाजे नित वाजे अपने खसम निवाजे आसर रहो डोलो मत कब हूं गुर कै बचन आधार जय जयकार सगल भूमंडल मुखी उज्जल दरबार जिनके जीत नहीं फेरे आपे पया सहाई अचरज किया करना हारे नानक सच वड़ियाई तनासरी महला पंजवा कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो हर बिन मुक्त न काहू जियो रहाओ मन निर्मल कर्म करो तारण तरन हारो

सो कहियत है सूरा आत्म जिणै सगल वस तां कै जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइया आत्म रंग सरणी पावन नाम ते आवन सह समावन संग रहाओ जन के चरण वसै मेरे ही अरै संग पुनीता देही जन की तूर दे हो कृपा निध नानक कह सुख एही। तनाश्री महला पंजवा जतन करै मान खुडह कावै ओह अंतर जामी जानै पाप करे कर मुकर पावै पेख करै निर्बानै जानत दूर तुमै प्रभ नेर उत ताकै उत ते उत पेखै आवै लोभी फेर रहाओ। जब लग तुटै नाही मन भरमा तब लग मुक्त ना कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनाश्री महला पंजवा नाम गुर दी हो अपने जा कै मस्त करमा नाम दृढ़ावै नाम जपावै ताका जुग मैं तरमा। जन कौ नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की मानै जो जो हो ग्रहाओ नाम तानो जिस

नेत्र पुनीत पहे दर्श पेखे माथे परोर वाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल तुम तो रखनहार दयाल सुंदर सुगण बेअंत पिता प्रभ हो प्रभु कृपाल रहाओ। महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन ने ऊपर साल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांध्यो पाल। तनासरी महला पंजवा अपनी उकत खिलावे भोजन अपनी उकत खिलावे सर्व सुख भोग रस देवे मन ही नाल समावे। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे महतारी बारक कहो तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवा।

संतन राम नाम हितकारे। अपनी उकत खिलावै भोजन, अपनी उकत खिलावै सर्व सुख भोग रस देवै, मन ही नाल समावै। हमरे पिता गोपाल दया।

मंत्र राम नाम हितकारे। सुख सहजानंद मंगल सहित पवनित पार उतारे रहाओ। तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे। जन नानकी सरदा पूरो ठाकर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवा छडाए लियो महाबली ते अपने चरण परात। एक नाम दियो मन मंता।

रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी ए टेक मन सादारी। सागत की वरदा जाय बिरथारी। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी। बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साजना संगारी। तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना। शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म रह जाती। रसना राम रसायन माती।

नानक दास मुख ते जो बोलै इहां उहां सच होवै। तनासरी महला पंजवां औखी कड़ी न देखण देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले। प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत आद्यंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ। मन बिलास पए साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूर्ण पैज रखाई। तनासरी महला पंजवां जिसको बिसरै प्राण पत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन रंगेओ। अमै सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस छीज गया सब तंते प्रीतम स्यो मन लागा रहाओ। जय जय पेखों तै नारायण सगल कटा मैं तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनदागा। तनासरी महला पंजवां जन

संतन का संग पावा, सोग अग्न में मन ना व्यापै, आठ पहर गुण गावा, स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मदयंत प्रभ जापण, नानक रंग लगा परमेश्वर, बाहुड़ जन्म ना छापण। तनासरी महला पंजवा, मांगो राम ते सब थोक, मानख कहो जाचत शरम पाई है, प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ। कोखे मुनजन सिमरत पुराना, वेद पुकारै कोख, कृपा सिंध सेव सच पाई है, दुवै सोहेले लोक। आन आचार व्यवहार है जेते, बिन हर सिमरन फोक, नानक जन्म मरण पह काटे, मिल साधु बिन से सोक। तनासरी महला पंजवा, तृष्णा।

मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का धाम चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम गोबिंद मोदर सिमरौ दिन रैन नानक सत कुरबान।

नाम गोबिंद का सदा लीजै, मिटै कमाणे पाप चराणे, साध संगत मिल मुआ जीजै रहाओ। राजोबन बिसरंत हर माया, महा दुख एहो महात कह, आस प्यास रमण हर कीर्तन, एहो पदार्थ भागवंत लहै।

0: खासदार को चाहे तो ताज पहना दे, वो खासदार को चाहे
1: तो ताज पहना दे,
0: वर्ष बार मौसम में एक खुशी ला दे। जो भटकते हैं, जो भटकते हैं नहीं पाते रास्ता कोई, उन्हें एक इशारे दे, जरा गौर कीजिए, उन्हें एक इशारे दे, उन्हें
2: तो सुनिए ना।